बाबा भी तो मुसलमान थे, सूफी संत थे, तो उन्होंने लिखा इसी पिछवाड़ में।